ऐसे ही ताओ था कर और एल जमानते को पतंग फारो नंबर ओचो ये नंबर में वे पतंग फारो नंबर में वे कई और एल जमानते